तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहिले। रखो रखन हार दयाला, नानक करके गुले।

चेत आवै चिध्यावन गा सदका सर्ब सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय।

के सर्वं कलि है के सर्वं दलि है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र धन्य के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पौण्य के सर्वत्र देशा के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो।

सुध सुधारिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हुते कृति एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली बिद न्यावत शीश न जात बिचारी।

तिन साधु चरण ना सेवे काबहू, तिन सब जन्म अकथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलो जन्म सनाथा, मोका की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगं नाथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा, हम अंधले को गोरे अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलंथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी,

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो,
1: कल क्लेश तन माहे मिटावो।
0: सिमरो जास विशंबर एकै,
1: नाम जपत अगंत अनेकै।
0: वेद पुराण सिमरत

0: सर्व सगल में श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया,
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया,
0: सगल उद्यम में उद्यम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा,
0: सगल वाणी में अमृत वाणी,
1: हर को जस रस

0: बुझारत बूझे डोरा
1: निस्कहियो तो समझे पूरा
0: कहां बिसनपद गावे गोंग
1: जतन करे तो पी सरपंग
0: पिंगल पर्वत पर पवन
1: नहीं हो तुहा उस गवन
0: करतार करुणा में दीन बेनती करे
1: नानक तुमरी कृपा तरे
0: संग सहाय सो आवे न चीत
1: जो वैराई तास्यो प्रीत
0: बलुआ के गृह पीतर बसे
1: अंध के माया रंग रसे
0: कर मान मन प्रतीत
1: वैर
0: ब्रोध काम क्रोध मोह
1: झूठ बेकार महालोभ द्रोह
0: याहू जुगत बिहाने के जन्म
1: नानक राग रे अपन कर कर्म
0: ठाकुर तुम पह अरदास
1: जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम बारिक तेरे
1: तुम्हारी कृपा मैं सुख कनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सगल सामग्री तुम्हारे

0: आकाश बाहर सह ले,
1: अज्ञानी मन रोस करे,
0: अपनी प्रतीत आप ही कोवे,
1: बहुत उसका विश्वास न होवे,
0: जिसकी वस्त तिस आगे रहे।

0: यह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे।
1: इसा कर को रख मन माहे।
0: यह प्रसाद सुगंध दिन लाव है।
1: इसको सिमरत परम गत पावे।
0: यह प्रसाद बसहे सुख मंदर।
1: इसह त्याई सदा मन अंदर।
0: यह प्रसाद गृह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमरो सरसना।
0: यह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याई त्यावन जोग।
0: यह प्रसाद पाठ टंबर हंडावे।
1: इसह त्या कत अवर लुभावे।
0: यह प्रसाद सुख सह सोई जे।
1: आठ पहर ताका जस गावी जे।
0: यह प्रसाद तु सब

0: जात
1: सोपर सिमर सदा दिन रात
0: प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने करनाद
1: जय प्रसाद देखे विस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सोए जय बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समाव है
0: ऐसा प्रभु त्याग वरकत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार

0: जतन
1: साध के सांगे एक ऊपर जतन
0: की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभु है समानी
0: संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुल्ले
0: साध के संग आवे बस पंच
1: सार संग अमृत रस पंच
0: सार संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग ना कत हूं तावे
1: सार संग जस्तत मन पावे

0: ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टम
1: त्रयोदशी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जोगता।

0: अनिले तावत बंदा
1: ज्ञानी के होए सो फला
0: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एके रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा फल जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहम बद त्यागत
1: परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होयो अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर

0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त योग जीव का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,

0: नानक कीमत कह न जाए। गुर प्रसाद किने बखियानी, कोट मदह किने मिले जीना।
1: भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर

0: कछ करे सोई सुख मान,
1: भूला काहे फिरे अजान।
0: कौन वस्त आई तेरे संग,
1: ना करे ओ रस लोभी पतंग।
0: राम नाम जप हृदय माहे,
1: नानक पासे ती कर जाहे।
0: जिस बकर को लैन तू आया,
1: राम नाम संतन कर पाया।
0: तज अभिमान लेहो मन मूल,
1: राम नाम हृदय में तोल।
0: लाद खेप संत संग चाल,
1: अवर त्याग भी क्या जंजाल।
0: तन तन कहे सब कोए,
1: वो कुजल हर दर कहे सोए।
0: यो बापार बेला बापार,
1: नानक ताके सद बलिहार।
0: चरण साध के तोए तोए पियो,
1: अर्प साध को अपना जियो।
0: साध की तूर करो स्नान,
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान।
0: साध सेवा बड़ भागी पाइये,
1: साध संग हर कीर्तन गाइये।
0: अनक बिघन ते साधु राखे,
1: हर गुण गाये अमृत रस जाके।
0: कोट गही संत दरियाया,
1: सर्व सुख नानक तह पाया।
0: मृतक त्यों जीवालन हार,
1: भूखे को देव तेरा हार।
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे,
1: पूर्व लिखे का लहना पाए।
0: सब कुछ तिसका हो करने योग,
1: तिस बिन दूसर हुआ न होग।
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी,
1: सब ते रूच निर्मल हे करनी।
0: कर कृपा जिस को नाम दिया,
1: नानक सो जन निर्मल थिया।
0: जाके मन गुर की प्रतीत,
1: तिस जन आवे हर प्रभ जीत।
0: भक्त भक्त सुनिए तै लोए,
1: जाके हृदय एको होए।
0: सच करनी सच तां की रहत,
1: सच हृदय सतमुख कहत।
0: साची दृष्ट साचा

0: सहज आनंद
1: सा संपद परमानंद
0: नरक निवारु धारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित बो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: पाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारन बार
1: नानक जी का यह उद्धार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल हे रतन
0: सुनत कमावत होत उदार
1: आप तरह लोक कह निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लगा हर रंग
0: जय जय सावधान आहद बाजे
1: सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे
0: प्रगटे गोपाल महांत के माते
1: नानक उतरे तिन के साथे
0: सरन जोग सुन सरणी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए वैर पय सब रेन
1: अमृत नाम सा संग लैन
0: सो प्रसन्न पय